Big 106.2, the beat of Bollywood. आप सुन रहे हैं Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: The Big Weekender. Hold tight for 4 hours of the biggest Bollywood hits.
1: All weekend long.
0: Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
3: दो या चार?
2: चार।
3: कब तक वापस लौटेगा?
2: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
3: चार या
2: पाँच? पाँच।
4: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7-9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। बिग 106.2

0: आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
1: मेरठ की एक पिक्चर परफेक्ट फैमिली, एक परफेक्ट बहू और एक ऐसा राज जो सब कुछ बदल दे।
2: तुम्हें डायन ही चाहिए थी ना, लो आ गई।
1: Amazon MGM Studios and Color Yellow Production present Nayi Naveli, starring Yami Gautam, Adinath Kothare, Sunita Rajwar and others. Releasing 16th October in cinemas. Distributed by Al Nisr Cinema Film. To win invites, keep listening to Big 106.2.

0: The Big Mix. Weekdays 1 to 5 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
1: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
2: दो या चार?
1: चार।
2: कब तक वापस लौटेगा?
1: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
2: चार या
1: पांच?
3: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7 to 9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2। द बीट ऑफ बॉलीवुड। बिग Point two, the beat of Bollywood.

0: आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
1: मेरठ की एक पिक्चर परफेक्ट फैमिली, एक परफेक्ट बहू और एक ऐसा राज जो सब कुछ बदल दे।
2: तुम्हें डायन ही चाहिए थी ना, लो आ गई।
1: Amazon MGM Studios and Color Yellow Production present नई नवेली, starring Yami Gautam, Adinath Kothare, Sunita Rajwar and others. Releasing 16th October in cinemas. Distributed by Al Nisar Cinema Film. To win invites, keep listening to Big 106.2.

0: 92.2, the beat of Bollywood.
1: Mai diwani tujh na jaana mast ho ke gaawa la ke bande
2: two legends one stage one unforgettable evening pantheon presents borderless melodies with Abida Parveen and Kailash Kher live in concert 13th November at Dubai World Trade Center book your tickets now on platinum list brought to life by Hop Events creating experiences that stay with you official radio partner big 106.2
3: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने
4: दो या चार
3: चार
4: कब तक वापस लौटेगा
3: यूं ही यहीं 4-5 दिन में
4: चार या
3: पांच
5: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन ओटीटी पे क्या देखें क्यों देखें देखे भी या करें स्किप मैं सब बताऊंगा द बिग बिंज विद सिड प्ले दबाओ कंफ्यूजन हटाओ
0: द बिग बिंज विद सिड Saturday 7 to 9pm and Sunday 10am to 12pm only on Big 106.2 The Beat of Bollywood Big Big 106.2 The

0: मैंने ना फैसला किया है।
1: करेक्ट फैसला किया। तू कुछ नहीं कर सकता।
0: मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ना क्या कर सकता हूँ।
2: Less scrolling, more streaming. Let Sid take control of your weekend watch list. This is The Big Binge, only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.

It's all about chaos, right? वो एक मोबाइल टावर से जुड़ा हुआ है. एक मोबाइल टावर लैंड होता है बनवारी के गांव में, एंड रोशनी अपनी SSC की एग्जाम की तैयारी कर रही है. भूगोल इज डीलिंग विद दिस अनएक्सपेक्टेड फेम. वो फेमस हो गए हैं भाई साहब. सो हर किसी की जिंदगी में एक नया प्रॉब्लम है, एंड दैट इज व्हाट दिस सीजन इज अबाउट. फर्स्ट सीजन की काफी सराहना की गई थी फॉर इट्स वार्म स्मॉल टाउन ह्यूमर. बहुत ही लाइकेबल कैरेक्टर्स भी थे, सो नेचुरली काफी क्यूरियोसिटी भी थी कि सीजन टू क्या उस चार्म को रिक्रिएट कर पाएगा विदाउट सिंपली काइंड ऑफ रिपीटिंग इटसेल्फ. एंड द कास्ट इज बैक एज वेल. गजराज राव, रेणुका शाहने, स्पर्श श्रीवास्तव, भुवन अरोरा एंड शिवानी रघुवंशी. सो डज द सेकेंड सीजन स्टिल हैव दैट दुपहिया वाला मैजिक? वी विल फाइंड आउट एज द शो गोज फॉरवर्ड. दिस इज द बिग बेंच विद मी सिड राइट हियर ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.

Big 106.2 पर this is the Big Binge with me Sir. It's time to talk about the good stuff. We are talking about Dupahiya, the show that released on Prime Video Season 2 इसका है and the best part is कि जो दुनिया है ना, the world still feels warm, very lived in, very genuine. कि हाँ नहीं, कभी गए नहीं हैं धड़कपुर, लेकिन गए होते तो वहाँ पर ऐसा ही होता, genuinely very heartfelt the world is and you genuinely enjoy spending time with the characters out there. Gajraj Rao as expected, terrific, कहने की बात नहीं है. Sparsh Srivastav बहुत ही funny है and जो ensemble cast है, it works क्योंकि कोई भी ना ऐसा नहीं सीम हो रहा कि they're desperately trying to be funny. कभी कभी ऐसा होता है ना कि कॉमेडी आप पे थोप दी गई है ऐसा फीलिंग आता है, लेकिन नहीं, the punchlines are landing and the show is clever when it uses village problems to talk about bigger things. मतलब आपको लगेगा कि ये canvas छोटा है लेकिन problems are a bit bigger than the canvas, so that always creates conflict, right? So technology के around अंधविश्वास, exam का pressure, social media का fame, यहाँ तक कि rumors, ambition, ये सब के बारे में काफ़ी effectively बात हो रही है. And there's also something very refreshing about comedy जो कि चिल्ला चिल्ला के ये नहीं कह रही कि देखो देखो मैं कितना funny हूँ, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा. And जो best moments हैं दुपहिया के, it's got that lovely quality in those moments जहाँ पर the joke comes from people taking completely ridiculous situations very very seriously. हाँ, कि आप और मैं उसको सीरियसली नहीं लेंगे लेकिन ये लोग उसको सीरियसली ले रहे हैं एंड दैट इटसेल्फ इज जेन्युइनली क्वाइट फनी, वेरी डिफिकल्ट टू पुल ऑफ बाय द वे. एंड जेंटल है, अफेक्शनेट है द स्टोरी एंड इट्स जेन्युइनली कई बार वेरी वेरी फनी. सो दोज आर द गुड पार्ट्स अबाउट दुपहिया सीजन 2. व्हाट आर द नॉट सो गुड पार्ट्स, कमिंग अप ऑन द बिग बिंज विद मी सिड राइट हियर ऑन बिग 106.2. वी आर द बीट ऑफ बॉलीवुड.

0: मैंने ना फैसला किया है।
1: करेक्ट फैसला किया। तू कुछ नहीं कर सकता।
0: मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ना
2: क्या कर सकता हूँ।
3: Less scrolling, more streaming. Let Sid take control of your weekend watch list. This is The Big Binge, only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.

बिग 106.2 पर दिस इज द बिग बिंज विद मी सिड. और 8 व्हाट्सएप ग्रुप्स पर एक साथ आपने मैसेज करने की कोशिश की है. हाँ, वैसी फीलिंग आती है प्राइम वीडियो का दुपहिया सीजन 2 देखकर. इट्स टाइम टू टॉक अबाउट द नॉट सो गुड एस्पेक्ट्स अबाउट द शो. डिस्क्लेमर, इट इज प्योरली माय ओपिनियन. द प्रॉब्लम विद सीजन 2 ऑफ दुपहिया इज दैट दे आर ट्राइंग अ बिट टू हार्ड. नाउ द राइटर्स आर ट्राइंग टू रियली डेस्परेटली मैच अप टू द चार्म एंड द फ्रेशनेस ऑफ सीजन 1, लेकिन देयर आर प्रॉब्लम्स. देखो, बहुत सारी कहानियां एक साथ कहने की कोशिश. दोस्त 8 व्हाट्सएप ग्रुप्स, देयर इज अ मोबाइल टावर, रोशनी का एग्जाम, भूगोल का करियर क्राइसिस, रोमांस, विलेज पॉलिटिक्स, स्कैम, सोशल मीडिया सुपरस्टिशन, इतनी सारी कहानियां एक साथ. एवरीबडी गेट्स अ स्टोरी लाइन. लेकिन आफ्टर अ वाइल ना ऐसा लगता है कि यार एक क्लीन स्टोरी दो ना. ये इधर उधर बार बार, इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू नो ADHD यू एक्सपेक्टिंग अस टू हैव. बट या इट ऑल्सो मीन्स कि कुछ कुछ इमोशनल मोमेंट्स जो है ना उनको सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती है. एंड सीजन 1 में जो एफर्टलेस सा एक फीलिंग था, सीजन 2 में ऐसा नहीं है. आई मीन लाइक आई सेड, इट सीम्स इट्स वेरी अपेरेंट द राइटर्स हैव बीन ट्राइंग अ बिट टू हार्ड टू काइंड ऑफ मैन्युफैक्चर एक और क्वर्की बट बिलीवेबल विलेज सिचुएशन. एंड कभी कभी आपको लगेगा कि यार सोशल सैटायर अच्छा है, अच्छी बात कही जा रही है, बट देन इमीडिएटली आफ्टर दैट यू विल फाइंड अ सीन विच इज वेरी डल, वेरी ओवर क्राउडेड. कि यार मतलब ये क्या हो रहा है. मेरे लिए द बिगेस्ट इशू वॉज वेरी वेरी सिंपल. इट इज स्टिल चार्मिंग, सीजन 2 इज क्वाइट चार्मिंग, लेकिन इट इज नॉट वेरी फ्रेश. ऐसा लगता है कि हाँ देखा देखा सा है. चलो बातें बहुत हो गई. इट इज नाउ गोना बी टाइम फॉर द वर्डिक्ट वेदर यू शुड स्ट्रीम इट और स्किप इट. सीजन 2 ऑफ दुपहिया ऑन प्राइम वीडियो कमिंग अप राइट हियर ऑन द बिग बिंज विद मी सिड.

बिग 106.2 पर द बिग बिंज एवरी वीकेंड आप सुनते हैं एंड इट्स टाइम फॉर मी टू साइन ऑफ. लेकिन देखिए दिस इज दैट शो, यू डोंट हैव टू अग्री विद मी. इनफैक्ट इट इज वेरी गुड, आई वुड प्रिफर इट इफ यू हैव सम डिसएग्रीमेंट. वी वर टॉकिंग अबाउट द शो दैट्स कॉल्ड दुपहिया सीजन 2. सीजन 1 पसंद आया, सीजन 2 कैसा था इसके बारे में वी बीन स्पीकिंग फॉर द पास्ट कपल ऑफ आवर्स. आपको कैसी लगी मेरी एनालिसिस? डू यू अग्री विद इट? डू यू नॉट अग्री विद? यू कैन ऑलवेज काइंड ऑफ डीएम ऑन आवर इंस्टा 106.2 बिग एफएम. ऑल्सो मोर इंपॉर्टेंटली इफ यू गॉट अ रिकमेंडेशन के अगले हफ्ते अगले वीकेंड पे जब मैं आऊं तो कौन से शो को मैं कौन से ओटीटी फिल्म को मैं रिव्यू करूं, इज देयर सम कंफ्यूजन आपके माइंड में, देखें ना देखें, टू बी और नॉट टू बी की जगह हम लोग वीकेंड पे टू सी और नॉट टू सी, इफ दैट इज अ कंफ्यूजन इन योर माइंड आई कैन सॉर्ट इट आउट. वॉच थिंग्स बिफोर यू, आई लव काइंड ऑफ वॉचिंग ओटीटी शोज एंड देन रिव्यूइंग इट राइट हियर ऑन द बिग बिंज. सो सेंड मी अ डीएम ऑन आवर इंस्टा 106.2 बिग एफएम, दैट्स आवर इंस्टा हैंडल. यू कैन फॉलो मी एज वेल, आई एम सिड सेट SIDSETH. टिल नेक्स्ट वीकेंड देन एंजॉय द रेस्ट ऑफ योर वीकेंड. बाय बाय.

आई थिंक पीपल लाइक मी हम अपने सोल मेट का भी इतनी बेसब्री से इंतजार नहीं कर रहे हैं जितना वी आर वेटिंग फॉर मुसाफिर कैफे का सीजन टू, बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू नो कि चंदर किसके पास जाने वाला है, प्रीति या फिर सुधा। Playing in the top 40 biggest hits of the week, you have Big Bollywood Countdown from Musafir Cafe this week on number 24, keeping your company a Mansi. Up next, we've got number 23 par Prem. फिर से आ चुका है हमारी जिंदगी में। मूवी का नाम है ये प्रेम मोल ले लिया, राष्ट्रीय फिल्म्स की मूवी है। द मूवी मार्क्स द ऑफिशियल रिटर्न ऑफ राष्ट्रीय प्रोडक्शंस मोस्ट आइकॉनिक कैरेक्टर नेम प्रेम टू द बिग स्क्रीन, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम इन 12 इयर्स दैट अ बरजातिया फिल्म फीचर्स अ लीड कैरेक्टर नेम्ड प्रेम विच इज नॉट सलमान खान। Because from मैंने प्यार किया to हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं, प्रेम रतन धन पायो, we've always imagined प्रेम as सलमान खान, but this time we've got आयुष्मान खुराना playing प्रेम। जब director सूरज बरजातिया ने पहले ये title propose किया था, आयुष्मान खुराना was hesitant and unsure about it,

0: Number 18.
1: पूरे देश को पगला दूंगा, अभी तो कुछ पेश किया है, सुनो। नाम या दाम? नाम
2: मनी फॉलोज माय ब्रदर।

0: ना पगला दूंगा पूरे देश को।
1: The Big Bollywood Countdown, the part of the Big Weekend, Big 106.2.

0: जो डर गया समझो मर गया, इनका सामना करो, तुम आगे बढ़ती रहो और इन्हें
1: नंबर 15.

0: 40 biggest Bollywood moments. 3 hours of the week's hits. This is the Big Bollywood Countdown. Big 106.2.
1: Playing with the top 40 biggest hits of the week. Happy weekend, I'm Mansi. This is the Big Bollywood Countdown. Time for the top 12. Chipak gaya pichle 3 hafton se number 12 par. It's called Ranaji 2.0, which is a modern upbeat recreation of the iconic gana 1995 ki movie Karan Arjun ka gana Mujhko Rana Ji Maaf Karna. इसे रिक्रिएट किया है तनिष्क बागची ने एंड आई थिंक उन्हें बॉलीवुड रीमेक स्पेशलिस्ट इसलिए कहा जाता है कि ही कीप्स द ओरिजिनलिटी ऑफ द कॉम्पोजिशन बट स्टिल ब्रिंग्स अ न्यू मॉडर्न टच. द म्यूजिक वीडियो इज कोरियोग्राफ्ड बाय रेमो डिसूजा एंड ऑफ कोर्स स्टार्स बिग बॉस फेम माहिरा शर्मा विद सुल्तान अली. ओरिजिनल गाने में ममता कुलकर्णी, जो काफी खुश नहीं थी इस गाने के रिक्रिएटेड वर्जन से. On number 11 from V1, we've got Tamanna Bhatia. Super hit movie and a super hit gana. I think post Aaj Ki Raat, there is one song in every movie that features Tamanna Bhatia and her amazing, amazing dancing skills. Ye gana V1 se is hafte 11 par.
0: Number 12.

अवारापन जो रिलीज हुई थी अर्ली 2000s में वाज सच अ बिग फेल एट द बॉक्स ऑफिस एंड ओवर टाइम इट बिकेम अ कल्ट बट दिस अवारापन 2 इज इमरान हाशमी के करियर की सबसे बड़ी सोलो हिट थैंक्स टू अस बिकॉज आपका और हमारा रिश्ता इमरान हाशमी से पुराना एंड विल गेट टू सी हिम अगेन ऑन द 27th ऑफ नवंबर विद गन मास्टर G9 With Imran, we'll get to see Janelia D'Souza and of course, Himesh Reshammiya and Imran Hashmi ka magic is back. After decades, they're doing a movie together jisme Himesh ka music hai and Imran actor hai. Afsana, afsana, afsana banaya. मूवी को डायरेक्ट कराया आदित्य दत्त ने जिन्होंने आशिक बनाया आपने बनाई थी सो या द ट्रायो इज बैक आफ्टर डेकेड्स विद गन मास्टर G9 इस हफ्ते ऑन नंबर 8

has been consistently number one पिछले चार हफ्तों से and stays on the top this week as well. मिथुन, प्रीतम and मुस्तफा जाहिद इस हफ्ते भी नंबर वन पे. फिलहाल यहाँ से मेरा बाय बाय कहने का टाइम. मैं आपसे मिलती हूँ मंडे को 5 to 9 is when I keep you company with the big thrill. Until then, do not forget to follow us on socials. 106.2 Big FM. It is. You can say hi to me. I'm Mansi talking. Happy weekend. Number

0: countdown. इस हफ्ते के 40 सबसे धमाकेदार हिट
1: countdown.
2: Here we go.
0: सिर्फ बिग 106.2 बीट ऑफ बॉलीवुड पर.

0: जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, डेफिनेटली करता हूँ।
1: From hidden cafes to viral hotspots, we have got your weekend sorted. The Big Recommends with Avni, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.
2: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ। This is the Big Recommends। Weather change हो रहा है and काफी hydration चाहिए होती है यार इंसान को, लेकिन तब भी ये hydration के नाम पे इमली का पानी, ice with salt and pepper चल रहा है, बहुत कुछ trend पर चल रहा है। But with that बताती हूँ, recommend करती हूँ कि करना चाहिए आपको, खाना चाहिए या नहीं। चटपटे खाने की बात, चटपटे खानों के साथ keep it locked to Big 106.2।

0: 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. दिस इज द बिग रेकमेंड्स. बात कर रही थी मैं आपसे हाइड्रेशन की. आजकल बहुत जरूरत होती है, लेकिन लोगों ने नए ट्रेंड निकाल लिए कि भाई आप ऐसे पानी पी सकते हो. इमली वाटर, इमली सोडा के नाम से एक रेसिपी वायरल हो रही इंस्टाग्राम पर. करना क्या है आपको, इमली का पानी लेना है, आइस लेनी है, सोडा लेना है. लेकिन ये जो मैंने ट्राई किया ना घर पे बैठ के, और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन देखने के बाद वीडियो में जब मैंने देखा था,
1: नजर में कैसे जादू कर दिया,
0: और पहली ही नजर में जो मेरा मुंह खट्टा हुआ था. लेकिन उसके बाद जब मैंने खुद ट्राई किया ये पूरी की पूरी रेसिपी, did I like it or not, बताती हूँ in a bit. Until then, keep it locked to Big 106.2.

नीरज श्रीधर का ट्रैक सॉन्ग का नाम था तुम मिले, और तुम भी यही बोलोगे यार थैंक गॉड अवनी हम तुमसे मिले, ये रेसिपी ट्राई कर लिया यार। बिग 106.2 में मैं हूँ अवनी आपके साथ, दिस इज द बिग रेकमेंड्स। एंड मैं बात कर रही थी इमली सोडा के बारे में, यू हैव टू ऐड इमली का पानी, बहुत सारा पुदीना, उसके साथ धनिया, सॉल्ट, पेपर, और उसके साथ साथ आपको नींबू की भी 2-3 बूंदें डालनी है। अब इतना खट्टा सोचने के बाद जुबान खट्टी हो जाएगी ना, लेकिन वेट फॉर इट, उसके ऊपर से डालना आपको बहुत सारा सोडा, खारा सोडा, नॉन फ्लेवर्ड, उसके साथ आइस, एंड देन यू सी व्हाट अ हिट रेसिपी हाइड्रेशन के लिए, टेस्ट के लिए, यू विल एब्सोल्युटली लव इट, आई एम टेलिंग यू। टेस्ट बज ना ऐसी हो जाएंगे। कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2। कमिंग अप नेक्स्ट इज आइस की रेसिपी, हाइड्रेशन बहुत जरूरी है। कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2।

0: That's it.
1: But definitely good.
2: From hidden cafes to viral hotspots, we have got your weekend sorted. The Big Recommends with Avni. Only on Big 106.2.
3: The beat of Bollywood.
4: बिग 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. एंड भाई, आपने आइस को किसी भी ड्रिंक में ऐड करते देखा है, किया है, लेकिन अगर आपने कभी आइस की रेसिपी खाई है जरा प्लीज मुझे बताओ 0543091062 पे, बिकॉज आई हैव गॉट यू वन वायरल आइस की रेसिपी. सुन के लगेगा सवाल हुआ कि पोपट बताती हूँ. बिट अंटिल देन कीप इट लॉक टू बिग 106.2.

गाने के साथ ये रेसिपी भी एकदम बोलोगे मस्त है। बिग 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ, दिस इज द बिग रेकमेंड्स एंड मैं बात कर रही हूँ द वायरल इंस्टाग्राम डिश जिसका नाम है स्पाइसी आइस मसाला। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या होगा इसमें? आइस की तरह से कोई मसाला कूट के डाला जाएगा किसी डिश पे? नो, आइस क्यूब्स लेने हैं आपको, उसके ऊपर आपको डालना है नमक, आमचूर, कश्मीरी लाल मिर्च, नींबू, चिलीज, व्हाटएवर यू लाइक। एंड होते हैं कुछ लोग यार जिनको ना रूखी सूखी आइस खाना बहुत पसंद है, कहते हैं कि उनमें आयरन की कमी होती है, ऐसे मैंने सुना था। सिर्फ मुझे लगा था सिर्फ मैं ही रूखी आइस खाती हूँ। रेसिपी बता दी है मैंने, ट्राई भी कर ली है, अब आपको रिकमेंड करती हूँ या नहीं करती हूँ बताती हूँ इन अ बिट। इतनी आइस खा लिया यार, अब थोड़ी गर्मी तो चाहिए ना। कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2।

0: सजना पे वारी जाओ ना जाओ, लेकिन इस रेसिपी पे जरूर चले जाओगे। बिग 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ, दिस इज द बिग रेकमेंड्स। बात करी थी मैं आपसे स्पाइसी आइस मसाला की रेसिपी के बारे में, जो कि इंस्टाग्राम पर काफी वायरल हो रही है। वो लोग एज स्नैक्स खा रहे हैं यार, आइस क्यूब्स को निकालना है बाहर, नमक, आमचूर, कश्मीरी लाल मिर्च, मोर चिलीज, नींबू, धनिया, ये सब ऐड करना है। लोग इसको स्नैक्स की तरह खा रहे हैं, आई एम नॉट इवन किडिंग। पॉपकॉर्न खाते हैं ना, ये आइस क्यूब्स को पॉपकॉर्न समझ के खा रहे हैं। ऊपर से आइस क्यूब्स के इतने डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स आते हैं जो उनको और एस्थेटिक्स करते हैं। आई एब्सोल्युटली लव इट। ट्राई किया मैंने ये स्नैक में खाने के लिए, एंड मैं कह सकती हूँ, एक तो टॉप नॉच टेस्ट फॉर समवन हुज एन आइस लवर, दूसरा अगर मैंने ये एज स्नैक खा लिया हर मील में तो वेट लॉस देखो फिर जरा आप मेरा।
1: होले होले हो जाएगा प्यार, चल ले आओ। होले होले
0: होले नहीं, रफ्तार से कम होगा वेट। हाईली हाईली रिकमेंड फॉर समवन जो आइस बहुत चाव से खाते हैं। इफ यू लाइक द आइस, आई ट्राई द स्पाइस आइस मसाला एंड लेट मी नो कैसी लगी आपको। 0543091062 पे मैसेज करके, अंटिल देन कीप इट लॉक टू बिग 106.2।

0: जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, डेफिनेटली करता हूँ।
1: From hidden cafes to viral hotspots, we have got your weekend sorted. The Big Recommends with Avni, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.
2: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ, दिस इज द बिग रेकमेंड्स। एंड आज संडे है तो आज से नवरात्रे शुरू हैं, एंड नवरात्रे शुरू होते ही ना यार सारे एथनिक आउटफिट्स बाहर आ जाते हैं यार, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसी डिशेस भी हैं जो किचन से बाहर आ जाती हैं, लोगों के टिफिन्स में आ जाती हैं, एंड आई एब्सोल्युटली लव देम। किसकी बात कर रही हूँ बताती हूँ अ बिट, अंटिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2।

0: 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. दिस इज द बिग रिकमेंड्स. नवरात्रि स्पेशल डिशेस जो हैं, बहुत रिकमेंडेशन है भाई मेरे पास. स्पेशली कुट्टू के आटे की पूड़ी, उस पर से साबुदाने की खिचड़ी, जो जनरली मेरे घर में तो वैसे भी नहीं बनती है यार, लेकिन जब भी मेरी कोई दोस्त नवरात्रि फूड लेकर आती ना टिफिन में, अलग से टिफिन बना के लेके आती मेरे लिए, आई एब्सोल्युटली लव इट. थोड़ा बहुत फ्राइड खाना होता है, लेकिन भाई इन्हीं दिनों में मिलता है यार ये टेस्ट. और अगर आपको मिल गया है,
1: हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी.
0: That tiffin is actually my प्यार. I absolutely love नवरात्रि food. आप बताओ मुझे इस WhatsApp पर मैसेज करके 0543091062, what's your favorite नवरात्रि food dish? 0543091062.

0: 106.2 पर।
1: मेरठ की एक पिक्चर परफेक्ट फैमिली, एक परफेक्ट बहू और एक ऐसा राज जो सब कुछ बदल दे।
2: तुम्हें डायन ही चाहिए थी ना, लो आ गई।
1: Amazon MGM Studios and Color Yellow Production present नई नवेली, starring Yami Gautam, Adinath Kothare, Sunita Rajwar and others. Releasing 16th October in cinemas. Distributed by Al Nisr Cinema Film. To win invites, keep listening to Big 106.2.
3: We have got your weekend sorted. The Big Recommends with Avni. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.

अरिजीत सिंह का ट्रैक सॉन्ग का नाम था हर किसी को वर्जन 2। और ये गाना ना यार मुझे मेरी टीनेज में वापस ले गया। बिग 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड द बिग रेकमेंड्स दिस वाज। कल मिलती हूँ वापस से आपको मंडे को, बिकॉज हम भी वापस चले गए हैं बैक टू पवेलियन मंडे रूट पर। कल है मंडे, मिलती हूँ फिर से द बिग मिक्स 1 to 5 पर। अंटिल देन कीप इट लॉक टू बिग 106.2। यू कैन एक्चुअली फॉलो अस ऑन 106.2 बिग FM का इंस्टा हैंडल, या फिर आप मुझे भी मैसेज कर सकते हो अवनी यार के पेज पर AVNIY AAA। बाकी का प्यार कल द बिग मिक्स पर 1 to 5। कीप इट लॉक टू बिग 106.2।

0: आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
1: मेरठ की एक पिक्चर परफेक्ट फैमिली, एक परफेक्ट बहू और एक ऐसा राज जो सब कुछ बदल दे।
2: तुम्हें डायन ही चाहिए थी ना, लो आ गई।
1: Amazon MGM Studios and Color Yellow Production present Nayi Naveli, starring Yami Gautam, Adinath Kothare, Sunita Rajwar and others. Releasing 16th October in cinemas. Distributed by Al Nisr Cinema Film. To win invites, keep listening to Big 106.2.
0: Big.
3: Yeah. Check it out.
0: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: Thank you so much. Thank you, thank you. That was lovely.
1: आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.

बजाए प्यार की शबनम मेरे गुलिस्तां में, बरसते रहते हैं हर सिमत मौत के साए, स्याहियों से उलझ पड़ती हैं मेरी आंखें, कोई नहीं है, कोई भी नहीं जो बतलाए मैं कितनी देर उजालों की राह देखूंगा, कोई नहीं है, कोई भी नहीं, ना पास ना दूर, एक यार है दिल की धड़कन अपनी चाहत का जो ऐलान किए जाती है, जिंदगी है जो जिए जाती है, खून के घूंट पिए जाती है, ख्वाब कांटों से

0: Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: तू मुझे चाहे न चाहे, ये तेरे बस में तो है, और मैं तुझको न चाहूँ, ये मेरे बस में नहीं।